0: जाए, तन सो मानस नानका जुगल चले पाए, चौकड़ मुलनाया बह चौके पाए, सिखा कंच राइया गुरु नमन थिया, ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पैना मिया रात दूसियां नाल, तग कपाहों कतिये बामन बटे आए, कोई बकरा न खाया सब को आखे पाए।

जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए नानक दोवें कुड़ियां थाए नकाई पाए पुड़ जिस वे सुपाई।

पौड़ी वड़ी हूँ अडाया पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जाने ला सब किस तेरे वास तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वरण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पे को कहन सकत केहे अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अम तुज कहे जय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वंत्रण कहत तह सर्वनाम कथ कवन करम नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुंदर मैं बूढ़त थे कब हुमिटा नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार मनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्व न आयो तरण गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहो पार भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर हम धनवंत भागठ सचनाय हर गुण गावे सहज सुभाय पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल परे भंडार अखूट अतोल खावे खर्च रल मिल पाई तोट न आवे बद दो जाई कह नानक जिस मस्तक लेख लखाई सो एत खजाना लया रड़ाई आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा सबे काज सवारे जा तुद पावंद सुख टल गुर सेवी अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह तुदरिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठे

तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब सजान ला सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद उदय तुद कर मान महता तेज अपना आप जर।

तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो हो दयाल, निस्बासुर मन आनंद होत, चितवत कृपा।

पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जी आंद्र जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला परपूर दिसै जत कता नानक दा।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की

रंग परंग नेक ना जापन करतबा। जी आंदर जियो सब कुछ जाला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला।

0: जो कुछ करना सो कर रहा।
1: सोदरा का समहला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्ब ठार मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनिया, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को शाड कै कहियो तुहारो द्वार, बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को शाड कै गहियो तुहारो द्वार, बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दों तां गाव हरी केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार यहो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी सो क्यों मनहो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे, सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वस्या वजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जनिशा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ यह वडियाइया, कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया,
ਪੰਚਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀਓ।

पुत्र सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जी को खावै जी को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैना जोग कीतो तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत।

रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते संत रामदास सरोवर नीका जो नावै सो कुल तरावै उदार हुआ है जी का जो नावै सो कुल तरावै उदार हुआ है जी का सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी सा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी सा सतना

सोरठ महला पंजवा कर दूजा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातिसा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातिसाहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पातिसाहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सुरठ महला पंजवां। सुख मंगल कल्याण सहज धुन, प्रभ के चरण निहारिया। रखनहार राखियो बारिक, सतगुर ताप उतारिया। सुख मंगल कल्याण सहज धुन, प्रभ के चरण निहारिया। राखनहार राखियो बारिक, सतगुर ताप उतारिया। उबरे सतगुर की शरणाई, जा की सेव न बिरथी जाई।

सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जामे पुरख बेदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मंगा मुकाओ कर संतन की तूरे अंतर जामे पुरख बेदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास

दर्शन रूपिया पर तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जारा ते कूड़ियारा खराबा में कर

राजा मेहता कुड़कुआ सिकदार काम ने पसंद पूछी है बह बह करें विचार अंधी रेत ज्ञान विखाने पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित इकम तुझ सने करे प्यार धर्मी धर्म करे गा वावे है मंगै मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बहे।

0: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार यकार ज्योत जग मंडल करयो जह कहते भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखा संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगत लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जंपर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय उचरे करतार गुरु गौर दरियाओ पदक डुबंते तार नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतार उचरे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर
2: चित चित अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं सर्व चिंत तुझ पास सात संगत हो तकूं तेरे हुक्म पवे निशा तो करो साहेब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करण जीव तो रखे तिव रहूं
0: भिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए इक चित है लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार के वसे देश हुकम बुझ विचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो
3: रिहो संत हां टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसी है मुखो ए पंडित मिठे बस ए कहो फिरयो किने ना परचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहा गुर दये मिलायो पिखिया।

सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै जनम मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जन का पूरन दीजै हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जान का पूरन दीजै हाओ बाल बाल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल राव बहुत जनम बिछोरी थी मादा इहो जनम तुम्हारी लेखी कह रवदास आस लग जीवा चिर पय दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़ी थी मादा इहो जन्म तुम्हारे लिखे करवदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे ओ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ।

साईं भोए दयाल, कृपा करे ता साई कार कराएसी। सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म नायसी, हुक्म मन्या होए प्रवान ता कसमे का महल पाएसी। खसमे पावे सो करे मनो चिंदया, सो फल पाएसी। तां दरगह पेंधा जायसी।